0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो।
1: अब श्याम पाए बा पाचो
0: बाज में होने में अभिष्या
1: दिन दे सा ना का सफरिंग
0: हाँ पाचे फ्रेंड नहीं माने उनका तो फिर बुआ को
1: ओके इमा एडिया ना ये मो होम पाया भी
0: तो फिर बम पाया मामी ना अभी नाम कुछ मांगो चाहे और मामी ने मेरे
1: इमा sɛ wode kristo yesu di paa awurade ma wo nsusuɛ bia wasusu n'afei mu nhyehyɛeɛ bia wɔhyehyɛ n'afei mu wɔ no awurade mfa ɔsoro stamp nsi so na ɔma nyiyɛdeɛ ɛnya so sɛ atadeɛ ɔma nyiyɛdeɛ ɛntamu so sɛ bosuo afei ankɔ awieyɛ maduru saa bere no awurade ma wonya tire wɔ w'abusua no mu in the name of jesus amen
0: Amen.
1: God bless you.
0: God bless you.
1: Okay. Bye-bye.